अपने वीरान माए रल के मैं रेंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी, तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

0: एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोह कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड चली अज माए, छड चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं। छड चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी तापनी बनी मां नहीं, मेरी तापनी बनी मां नहीं। बेगाने आच पोगल नू भेज के माए, बेगाने आच पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे लेनी। काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोलेनी, काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोलेनी, मैनू पाने दी डोलेनी। शुक्रिया साथू, बहुत बहुत मेहरबानी।
1: प्यारे श्रोतियो, सुरेंद्र भोगल जी तों बाद हुण असीं सद्दा देण जा रहे हां इंग्लैंड वसदे शायर तारा सिंह जी नूं। तारा सिंह जी वैसे दे पंजाब दे जिला जलंधर दे एक वड्डे पिंड कोकड़ पिंड नाल संबंध रखदे ने, ते बहुत लंबे समय तों ओह बर्मिंगम दे नेड़े रहिंदे ने। उत्थे ओह इंडियन वर्कर एसोसीएशन दे नाल जुड़े हुए ने। इस दे नाल दी नाल ओह अपनियां मनोभावनावां नूं जिहड़ा आ ओह कविता दे विच व्यक्त करदे ने, ते ओह साडी काम महफिल दे विच पहली वारी आ रहे ने, उहनां दा असीं स्वागत करदे हां। तारा सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੀਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਛੂਣਾ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜਿਸਮ ਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਮੁਰਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹੈ।

गई, जिंदवादे आचे डूब गई, जे समतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जर किया भी नहीं, सूली उत्ते

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जिस्म तरी जांदे, ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे की करां।

0: हाँ जी हाँ, कोई कोई चक्कर नहीं हैगा। ते वो मैं थोड़ा रोग अपना हो की क्या सी प्रोग्राम दा नाँ की सी,
1: शौक बल्ले
0: शौक
1: शौक बल्ले
0: शौक शौक शौक बल्ले। ते वो मैनू ना
1: रोग
0: जदों गाना
1: बल्ले
0: गाना हाँ
1: रोग बल्ले
0: रोग मैनू गाना याद उही आउंदे सी, रोग बल्ले।
1: जी
0: मैं तां ही तैनू कहण दिया सी।
1: जी
0: ओ चार कु लाइनां ने ओदियां,
1: जरूर जी आउंदे
0: ते ओ
1: आउण
0: कहंदा
1: दिओ जी।
0: हाँ जी।

0: चली गई।
1: बाजी
0: रो गया वल्ले दिल मेरे नू लाके चली गई। भुल दी नहीं भुल जानी दिलों भुला के चली गई।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

अगे पूछ हलौंदा ए लाख सच्चा होवे बिन पैसे बस उसनू थल्ले लौंदा ए कैड़े ओ भी बसने पदौड़ सदा इक्के ओ भी बसने पदौड़ सदा जिन्हां रखियां सोचा उच्चियां ने यारो मैं उस

पै गईया ने मेरे पल्ले सजना दर्द जुदाइया सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइया सबे पै गईया ने मेरे पल्ले सजना दर्द जुदाइया सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइयां सबे चलिए ता एक कर्म कमानी कड़ के कोई वैर जावी चलिए ता एक कर्म कमा

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दा रोड़ा मंजिल दे ना मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

0: दिन रात मेहनता कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारा होन जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत कर दे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसीं हुणे ही कुलवंत सिंह सैदोक जी दी कविता जिंदगी असी मजदूर तेरे सुन के हटे हो, ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवें उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लैके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसीं पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओ गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसे नूं दिल तो ही जा सकदा है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकदा है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकदा, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तो। करी करी के मैनू याद रोया करेंगी तू, करी करी के मैनू याद रोया करेंगी तू, पलकां नू हंजुआं दे नल पिगोया करेंगी तू, करी करके मैनू याद रोया करेंगी तू, हाय करी करके मैनू याद। बदलां दे विच बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू याद आएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू याद आएगा, किद्दां हिजर दे दाग, किद्दां हिजर दे दाग तोया करेंगी तू, करी करके मैनू याद

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मुंहों कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी, छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पर टोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी, तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक, हुन लुक लुक।

जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदा ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, ओ अपने परछावे तो

जिंदवा दया चे डूब गई जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करा जे आपे चे की करा।

जे डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई।